0: गयो। आ तिजोरी खोलो जोई।
1: चाबी कम लागते नथी।
0: सेठियाओ द्रुजता हाथे काम नो थाय। लाओ सावी लाओ।
1: अरे
0: मने दियो सावी। आओ हूज खोली दो। आ लियो फटाक दिन खुली गई जोई लियो। वाह लाओ ये दस्तावेजो अबे मने जापी दियो। हाँ आपना आयते फाड़वानी मर्जी होय तो आप फाड़ो। माफ करजो सेठिया हुई महात्मा गांधी ना पंथ मा थोड़ो थोड़ो फेरो छु पण मारा हाथ ना पंजा छे ने हजी बार ना बार ज रही गया छे। ना ना निकर हूँ आटली हिंसा करू कदी है। आ तो तमे मने लासार करी दीधो सेठियाओ। जो बोलू तमे फरी गया उद्धताई तमे करी टेलीफोन पकड़वा तमे दोईडा घरनी तकरार मा पोलिस ने बोलावाय हे
1: खुशाल।
0: ना ना हूँ एम कहू छू कई खून नो इरादो के मामलो थोड़ो हतो हे। हांभळो सेठियाओ हांभळो તમારા ઘરની ધૂળ પણ લઈ જવી મારે હરામ છે હો સેઠિયા। આ વિજય ચંદ્ર હારે દેશમાં ક્યારે જવાના છો હે।
2: હમણાં જ આપ સાંભળી રહ્યા હતા ઝવેરચંદ મેઘાણીની સામાજિક નવલકથા વેવિશાળનું ધ્વનિ નાટ્ય રૂપાંતર। નાટ્ય રૂપાંતર હસમુખ રાવળ, નિર્માણ સહયોગ પ્રેરક વૈદ્ય, પ્રસ્તુતિ આર એસ દુધરેજિયા, આકાશવાણી રાજકોટ।